ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय

नमः। ओम श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठा

तेरे दिखाई सत्य साई हे मचाई चाहिए सच्चे बाप प्रेम बाप चाहिए लाल भाई को तू दिखाई दे।